गुरु अर्जुन देव जी, जे मेरी बच्ची दा रिश्ता तुसी मन लवो, तुहाडी पूजा कीती जाएगी, तुहाडा सत्कार कीता जाएगा, जे तुसी मेरी बच्ची दा रिश्ता न मनिया, अपने साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब नाल जे मेरी बच्ची दा रिश्ता ना कीता,

विचार चल रही है। मांगना मांगण नीका हर जस गुरते मांगना, सिखा तेरी अरदास हो जा तरला होवे। हे गरीब नवाज तू ना विसरे मेरी ते तेरे ऐसी रहमत हो जावे। गुरु गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। ऐ रंग लिया दे सासू ऐसा प्यार हो गए साड़ी अरदास विच। हे सचे पातशाह पूर्ण हो हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। आ मंग हो मांगना मंगन नीका हर जस गुरते मंगना, आ सफली है मंग। साड़ी मंग विच आ करला हो गए। गरीब नवाज ज्यों मीना बन पानी है, ज्यों मीना बन पानी है, ज्यों साकत मरे प्यास। हे गरीब नवाज साडे ते ऐसी कृपा कर दे त्यों हर दिन मरिए रे मना, जो वरता जावे साफ। आ कृपा कर दे आ मन नूं दुख पहुंचे जिस दिन अमृत वेला टुट जा। आ मन नूं दुख पहुंचे जिस दिन तेरा नितनेम रह जावे। आ मन नूं दुख पहुंचे जिस दिन कीर्तन दी हाजरी रह जावे। ऐसी परीक ला दे ऐसी कृपा कर दे। आ कहंदे ज्यों मीना बिन पाणी है, किन्नी परीक है। एक पाणी दे जीव कोलों सिख्या लो कि ओ सिख्या लैके ओहो जिहा प्यार गुरु नाल हो जावे। किन्ना क प्यार ज्यों मीना बिन पाणी है, पाणी तों बाहर कढ दिओ मछली नूं, वध तों वध अद्धा घंटा घंटा दो घंटे कढदी है, तड़फ तड़फ के जान दे देंदी है, तेरे बिना नहीं जिया जा। इत्थे मछली ने सार संगत तड़फ तड़फ के जान दे दित्ती, हुण जदों मर गई तो एक लाश है, एक लोथ है। लाश विच कोई होश नहीं है, हुण कोई जींदा पन नहीं है, लेकिन कहंदे मछली तों कुर्बान जाइए इतनी प्री। गरीब नवाज बाणी आखदे ने खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी। इन्नी प्री खंड खंड कहंदे कट कट के, खंड खंड दा अर्थ कट कट के। उतना ते मछली खानी महा पाप है। इना अंदाजा लायो एक गल आ रही है प्रीत दी। ओ पॉइंट लेना की पॉइंट लेना प्रीत दा, मछली ने तड़फ तड़फ के जान दे दित्ती, इनी प्रीत थोड़ी। खान वाला होवे जदो मछली खा के रात नूं सौवे सराणे जल दी गडवी रखदा है, क्योंकि अज मैं मच्छी खाधी राती मैनू दो वारी तीन वारी प्यास लगनी है। कहंदे इन्ना प्यार मच्छी नूं पानी दे नाल कट कट के शक्ल चेहरा सब कुछ बदल गया। एक लाश लोथ विच सवास भी नहीं, तां वी कहंदे पानी नाल प्रीत नहीं छड्डी। सिखा तेरी भी गुरु नानक नाल इहो जी सांझ हो। खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना विसरियो पानी। सत्संग तै रंग लगा हो ज्यों मीना बिन पानी। साडी मंग दे विच इहो जी तड़फ होवे, इहो जी प्यास। अमृतसर शहर दा मैं नां नहीं लैणा, अमृतसर शहर विच रहण वाला

राग मल्हार बारे गुरु अमरदास जी का वचन है, मल्हार शीतल राग है, हर त्याया है सांत होए। फिर ये भी हुक्म है, गुरमुख मल्हार राग जो कर है तीन तन मन शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मल्हार दा प्रभाव है सारे पासे, उत्साह दा वातावरण हो जाना। मल्हार राग विच बाणी दा मीह पैंदा दिसेगा, अते जिसने भी घुट अमृत बूंद पी लई ओ निहाल हो गया। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। अमृत बचन है, इस बाणी विच बहुते शब्द मीह अते बबीहे दे संबंधा नूं ही दर्शाउंदे हन। यह भारतीय संगीत का बड़ा प्रसिद्ध राग है, ना केवल संगीतकारां विच सगो जन साधारण लोकां विच बहुत प्रिय है। मल्हार एक मौसमी राग है, भारत की भूगोलिक स्थिति अनुसार इस राग का गायन सावन भादरो के महीनों विच वधेरे कीता जांदा है। बरखा रुत विच यह हर समय गाया जा सकता है, उंज यह रात के तीजे पहर गाया जाता है। इस राग विच दोनों निषाद लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध। इसका वादी मध्यम अते समाधि शरज है। डॉक्टर अजीत सिंह जी पेंटल पासों ये शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या अते दूजे शब्द का मनोहर कीर्तन राग मल्हार विच ही कर रहे हैं भाई नरेंद्र सिंह जी। पवित्र शब्द है राम राम बोल बोल खोजते वड़ पागी। पहला शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मुरुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर।

मन लोकां पास फरोलदा। महाराज कहिंदे नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज बचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच ऐसी प्रेरणा

सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिन मंत्र सुनाया, पवजल विचों कढ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। ज्यो बुलावे तुम बोलहिं स्वामी, ज्यो बुलावे तुम बोलहिं स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कत।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं आन, साध की शोभा सदा। सतगुरु युगो युग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्री जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजियां लगवाउन दे लई, सत्संग हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, बड़ भागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोल घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर यहां दे 300 साले दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। एक कितने दिहाड़े इकट्ठे होए हन। ब्रह्मज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, बड़ भागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जाण नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहिगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें इक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज दे नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरुषां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। गज बज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र कराया करो, अपनी हाजरी लगवाया।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेक तरह के दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेडे परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मां बंधना तो रहत हो गए। वो लो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं एसी गुरमुख की कठाली विच ढालिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुओं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुओं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी का सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुओं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी काम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकते, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आना है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजां प्यारे ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनूं इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी, साध संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो
1: सतनाम।
0: ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुन पिता जी सोचते हैं की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नू अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदीप सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतना दुनिया दी इक निगाह नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तूं तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: ये बड़ियां सास लम्मिया विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ये लाइन बड़ी औखी है, ये फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहना कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ये बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दस दी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, बेद लाज तिन्ने त्याग दतिया। बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिन्ने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इस नूं घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उस नूं भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नूं भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुर पीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सास संगत 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़िया दे पौन ते सुट देंदे, सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग गलेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सात संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ।
2: ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਮਰੀਦ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ,

इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता, थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीव है बोलती नहीं, ततलाती है। मात को क्या हो गया, बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती, सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो भाई करो, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं, एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचन चेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिग रहा था, माखियों का डिग रहा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा एक काला उस रस्सी को काट दिया, वो खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली, इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, ते आपने मुंह क्यों खोला, कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई करो, ऐसा हमें बताया गया, बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई करो, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए, वो ऐसे ही है। देख लेना किसी को ये बताओ, कभी कह कर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, आखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, इसको पूछ ले, हम भी कहते हैं आप भी पूछ कर देख ले। हम पूछते हैं एक ही

ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، کیا کریں؟ ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے بہت کام کرنے ہیں، اپنے کٹمب کو پالنا ہے، اس کو کام لگانا ہے، ابھی تو ہمارے سر پر، ہمارے کندھوں پر بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کندھوں پر۔ ہم سب کام کر لیں پھر ہم نام جپیں گے، پہلے تو کام تو مکا لیں، کام مکا لیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیں گے، ذمہ داریوں کو تو پھر کر لیں گے، نام جپ لیں گے۔ لیکن اس سے یہ پوچھنا چاہیے، کیا کسی نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر مریں گے؟ کسی نے ایسی گارنٹی لی ہے کہ ہم سب ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کیتے گرب گلے، ہم نے دیکھا کتنے بالغ، کتنے جوان جوبن بھر میں چلے گئے سنسار سے۔ پتر بانی میں کیا ہے؟ نئے بارک نئے جوبن ہے، نئے بردی کچھ بند، او ویلا نہ بوجھی ہے، جو آئے پرے جم فند۔ کتنے آئے، کتنے چلے گئے، یہ بھی بتایا گیا، جیسے کرسان بوے کرسانی، کاچی پاکی باڑ پرانی، جو جنم ہے سو جانو موا، گوبند بھگت استر ہے تھیا۔ دیکھنا، جب کسان بوتا ہے نا، اس کو یہ یقین ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ جو میں بوا ہے اس کو کاٹنا ضرور ہے۔ ہر کسان جو بھی ہو، جو ترتی میں بوتا ہے، ایسا بھروسہ کرتا ہے ایک دن اس کو کاٹنا ہے۔ جو جنم میں سو جانم ہوا، ایسے ہی جس نے جنم لے لیا، یقین کرنا اس نے ایک دن مرنا بھی ضرور ہے۔ جس نے بھی جنم لے لیا وہ مرے گا۔ جب ہم نے دیکھا ایک کھیت میں، ایک کھیت کا رکھوالا کسان نے وہاں پر بٹھا دیا راکھی کرنے کے لیے، جب راکھی کرنے کے لیے وہ گیا، اس کے جانے سے پہلے اس کھیت میں ایسی فصلیں تھیں جن کو ایسے پھل لگے ہوئے تھے جو پک رہے تھے، اور اس کے جانے سے پہلے ایسا بھی دیکھا اس نے، ایسی فصلیں بھی تھیں جن کو پھول آئے ہوئے تھے، پھولوں نے پھل بننا تھا۔ اس نے دیکھا ایسی فصلیں بھی تھیں جو ترتی میں پنگر رہی تھی، اس کے سامنے بھی بوئی گئی۔ دیکھو، رکھوالا تو کھیت کی راکھی کرتا ہے، کسی کو بھی کھیت میں اندر نہیں جانے دیتا۔ کچی فصل تو کیا، وہ پکی بھی کاٹنے نہیں دیتا، لیکن کھیت کا مالک آ جاتا ہے، کھیت کا مالک آ کر اس کھیت میں جاتا ہے، راکھی کرنے والا اس کو سلام بھی بلاتا ہے۔ راکھی وہ کرنے والے کے سامنے سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، یہ مالک کے کیا ہو گیا، اس کسان کو کیا ہوگا، یہ پکی فصل کی بجائے کچی کیوں کاٹ رہا ہے؟ لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے، وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں، ایسے نہ کرو، ایسے کرو۔ ایسے ہی جب ہم سنسار میں آئے،
हमारे आने से पहले हम हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी आदिक ऐसे बुजुर्ग आए हुए थे, हमारे आने से हमारे घर में बहनें आईं, आखू आए, मेरे भाई आए, मेरे आने से मेरे घर में बेटी आई, बेटे आए। देखो हम आए, सब परिवार देखा, किसी की क्या मजाल है, हमारे किसे छोकरे को किसे बुजुर्ग को कोई बोल सके, हम झगड़ा करते हैं। लेकिन जब मालिक प्रभु आप आ जाता है, वो क्या करता है, कभी 5 साल का बूटा ले जाता है, कभी 10 साल का ले जाता है, कभी 50 साल का ले जाता है, कभी 60 साल का ले जाता है। हम क्या करें, हम तो यही बोलते हैं, जिस ठाकर स्यों नहीं चारा ताको की जय सत नमस्कार। हम तो यही बोलते हैं, नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बहस नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते, वहां पर तो चुप ही करनी पड़ती है। ऐसे भी हो जाता है खेत वहां पर ही रह जाए, रखवाले को ही ले जाए। ऐसे भी हो जाता है परिवार यहां ही, हम अपने आप को उस परिवार का मुखी मानते थे, वो मुखी को ही ले जाता है। इसलिए समझाते हैं, आप तो कहते अभी तो नहीं, हम जिम्मेदारियों को पूरा कर कर मरेंगे, फिर नाम जप लेंगे। अरे भाई कैसे जपेगा, जब नैनो नीर पहे तनखीना पे केश तुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी, जब आपका गला खाऊं खाऊं करेगा फिर जप लेगा। आंखों में पानी निरंतर बढ़ेगा बहेगा फिर जप लेगा, नहीं जप सकेगा। कहते अरे भाई मैं आपको बात बताता हूं, आपने तो क्या करना है, क्या निभाना है, आपके जो शरीर के अंग है ना, उन अंगों ने ही आपको वेला कर देना है। भाई गुरदास भी बोले, अन्ना लूला पिंगला तन थक्का मन दै दिसता, आंखें होते हुए अंधा हो गया, पैर होते हुए लंगड़ा हो गया। मैंने तो देखा, आपने देखा है, जब बालक था तब भी सहारे की जरूरत होती थी, बूढ़ा हो गया अब भी। बालक अवस्था में दांत नहीं थे, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते। आखो भाई ऐसी उलझन में बंधा हुआ, आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है। आखो वाहिगुरु, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा। भूलो रे ठग मूरी खाए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आंखों वाहे गुरु,
ਫਿਰ ਬੋਲ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਹਮਨੇ ਗਵਾ ਦਿਆ ਹੋਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਹਮ ਮੂੰਹ ਮੁੱਖ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਤੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸਕੋ ਗਵਾ ਕਰ ਤੋ ਹਮ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਤੇ, ਉਸਕੋ ਗਵਾ ਕਰ ਤੋ ਹਮ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਉਸਕੋ ਗਵਾ ਕਰ ਕੋ ਤੋ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮੇ ਉਸਕੋ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਬ ਹਮ ਇਹ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁਲੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਬਿਸਮਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁਲੋ ਰੇ, ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਭੁਲਾਈ ਹੈ, ਭੂਲੀ ਥੋਰ ਨਾ ਕਰ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਨੇ ਜੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲਾਵੜੋਂ ਸੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ। ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪੱਛੋ ਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਛੋੜ ਅੜੀ ਸੁੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਭੁਲਾਵੜੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੋ ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਥਾ, ਇਸ ਕੋ ਤੋ ਸਭ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਚਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਵੜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭੁਲਾਵੜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਔਰ ਕੈਸੇ ਭੁਲਾ? ਜਬ ਹਮੇ ਇਹ ਬੋਲਾ, ਭੁਲੋ ਰੇ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੈਸੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ? ਕਹਤੇ ਹੁਆ ਕਿਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਸੁੰਗਾ ਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਐਸੇ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਿਲਾ ਦੀ, ਠਗੋਰੀ ਭੁਲੋ ਰੇ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾਏ, ਇਹ ਭੁਲਾਵੜੋਂ ਮੈਂ ਆਕਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਠਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ। ਕਹਤੇ ਹੁਆ ਕਿਆ, ਜਬ ਇਸਨੇ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾਈ, ਤੋ ਇਸ ਕਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਇਸ ਕੋ ਸੂਝ ਥੀ ਵੋ ਜਾਤੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤਨ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਤਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰ, ਜੇ ਅਗਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਕਰ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਕਰ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਤਾ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਕਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਜਾਣਤਾ, ਤੁਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਕਰ ਸਿਰਫ ਤਨ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਮਨ ਹਮਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਲਾ ਹੋਗਾ। ਜਬ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕੋ ਆਤਮਾ ਕੀ ਓਰ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਹਮ
तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों वाहेगुरु, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आंखों वाहेगुरु, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोहो, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई, ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोहो, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो। आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के पोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ, ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पाप माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इसनू अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो वाहिगुरु, अपने आप को भुलाकर माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना, जिमें मद मक्खी शहद की मक्खी, आखो वाहिगुरु,
शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है, पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ जमदूत उसको लेने आ गए, वो बोला ऐसे करो भाई मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा ये धन आगे नहीं जा सकता, कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम देव तांची आन, निरपो निरपै हुए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है।
पूरा सतगुरु मिल जाए, जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितर शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

नित संत उबार गली मन गारे दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पशु पशु रघुनाद निरात सर्व समय सबको प्रतपाल।

विसारिए मन क्यों विसारिए ए वडदाता जो अग्नि में आहार पहुंचावे। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु माता दे उदर विच प्रतिपालना करदा है बच्चे दे। फिर जदों जन्म हुंदा है तां फिर दुध दी दात देंदा है। तेरे लिए किदियां उसने बरकतां छोड़ियां हन संसार विच कि माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वडदाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। माता दे पेट विच जठर अग्नि जिथे तेरी प्रतिपालना अकाल पुरख वाहिगुरु करदा रहा क्या हुन ना करेगा। इसलिए ए प्राणी ए जीव तू डोलना छड़ दे तू पटकना छड़ दे। मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। एक ईश्वर एक अकाल पुरख वाहिगुरु सारियां नु दे रहा है क्या तैनू ना देवेगा। इसलिए भाई तेरा फर्ज है जितने श्वास वाहिगुरु ने तैनू बख्श दिया ना तू जप जप के उन्होंने सफल कर ले। कुदरत कीम ना जानिया वड्डा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में शाह। जितने तक तेरे श्वास चल रहे हैं तू उसका शुकराना कर तू समर्थ अकर

तन गुरु नानक पातशाह एक लोटा नाले विच सुट दिता। आख्या श्री चंद पुत्र आ लोटा तो कढ लिया, महाराज कोई सिख आउंदा है उन्हूं कह देवांगे कढ ले आएगा। लक्ष्मी दास पुत्र तू लोटा कढ ले भई नाले विच। महाराज हुणे कोई सेवादार आंदा एवें लिबड़ जावांगे गंदे नाले विच वड़िए तुहाडे पुत्र होके। कोई आवेगा हुणे कढ दे। धन गुरु नानक पातशाह भाई लैणे वल निगाह कीती, लैणे आ भाई लैणे ने अपने वस्त्रां दा अपने शरीर दी परवाह नहीं कीती। भई चिक्कड़ विच लिबड़ जावांगा सत वचन कीता। सतगुरां दी आग्या सत सत करके मन्नी ते उस लोटे नूं गंदे नाले विचों कढ लिया। धन गुरु नानक पातशाह कहण लगे भाई किसे नूं चिक्कड़ विचों कढ़न वास्ते आप चिक्कड़ विच वड़ना पैंदा। ये अनेकां दा तारन तहार होएगा, अनेकां तरनगे इहदे सदके। ते समा आया फिर गुरु अंगद देव पातशाह दूसरे गुरु नानक बन गए सेवा दे सदके। भाई बाला जी एक वारी पुछन लगे महाराज आ तुसी साडे तों पिछे आए हो ते गद्दी दे मालक बन गए हो ते असी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच बचपन तों नाल रहे हां, कठे रहे हां। उचारण करो श्री इहदा कारण की है। थोड़ा ही समा होया तुसी आए हो ते सारियां दातां लै गए तुसी ते असी बचपन तों कठे रहे, सेवा विच रहे, सेवा भी भावना नाल कीती ते असी ओ कुछ क्यों नहीं बन सके जो कुछ तुसी बने हो। धन गुरु अंगद देव पातशाह कहण लगे बाला जी ए दसो तुसी गुरु नानक नू की समझे, किस नदर नाल उना दी सेवा कीती है। बाला जी कहण लगे मैं तां पूर्ण महापुरख समझ के संत समझ के सेवा कीती है। गुरु अंगद देव महाराज कहण लगे फिर तुसी केड़े संत तों घट हो, तुसी संत समझ के सेवा कीती है ते तुहानू संत बना गए हन। महाराज तुसी की समझ के कीती सेवा। गुरु अंगद देव महाराज कहण लगे मैं निरंकार समझ के सेवा कीती है। उचारण करो श्री, सात संगत बोलो श्री। चाकरी करदिया होया सेवक दी बिरती इतनी उच्ची होवे ते फिर हजूर कहंदे ने फिर ए नदर ए बख्शिश ए सारे संसार नूं तारन वाली बख्शिश हो जावेगी।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता है इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।